0: Energy. It's hot.
1: दो तोले की मंदिर ला दे, तीन तोले का कंगना।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कभी आपकी जिंदगी में ऐसी दुविधा हुई है दैट यू आर डेटिंग समबडी और उसे डेट करते करते उस रिलेशनशिप के आउटसाइड आपको किसी और से मोहब्बत हो जाती है, फिर क्या होगा? सो मेरी बेस्टी के साथ रियल लाइफ में लेजिट ये हो रहा है। शी इज बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम नाउ, मतलब इन लोग को आई थिंक 1 साल हो गया है और अब उसे नया नया समझ में आ रहा है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के फर्स्ट कजन से कुछ ज़्यादा ही लगाव होने लगा है। शी लाइक, यार हम बहुत ही थिक हैं और थिक होते होते कब मुझे उससे प्यार हो गया मुझे समझ नहीं आया, पर अब मैं क्या करूँ? आई वॉज लाइक, आई डोंट नो, ये दोनों भाई हैं, तू एक पर्टिकुलर भाई की 1 साल से गर्लफ्रेंड है और अब

आई डोंट नो हाउ यू आर गोना फिगर दैट आउट, बट अगर आपके पास मेरी बेस्टी के लिए कोई सजेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. भगवान बचाए मेरी बेस्टी को. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Energy. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो होते हैं ना, जिन्हें बात करके और डिस्कस करके हमें बड़े मज़े आते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हम भी उत्तेजित हो जाते हैं और सामने वाला भी उत्तेजित हो जाता है. ऐसे कॉन्वर्सेशंस को ना, दोज आर बेस्ट लेफ्ट टू हैव विद योर फ्रेंड्स, जो बहुत ज़माने से आपके दोस्त हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपके कॉलीग्स ऑल्सो. लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी डेट पर भी, आई वुड से, अगर आप ऐसे पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजीज डिस्कस करने लगते हो ना, तो इट क्रिएट्स सच अ टेंस्ड एनवायरनमेंट कि आप रोमांस के लिए जाते हो, लेकिन बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट, आप एंटागनाइज्ड और बहुत ही लाइक यू नो पैशनेट हो जाते हो, इन नॉट इन अ गुड वे. सो मैंने अपनी डेटिंग लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि जब मैं बाहर जा रही हूँ टू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टाइम, ऐसे जो मतलब बहुत प्रोवोकेटिव टॉपिक्स होते हैं ना, मैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट द सामने वाला टू थिंक कि भाई मेरे पास कोई ओपिनियंस ही नहीं है या मेरे पास एक्सट्रीम ओपिनियंस की कैपेसिटी नहीं है, बट बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू गेट टू नो द अदर पर्सन. और एक बार आप सामने वाले को जान जाओ, देन वंस यू आर इन अ कंफर्टेबल एंड सेफ एनवायरमेंट टुगेदर एक दूसरे के साथ, अगर आपके पॉलिटिकल व्यूज़ इंटायरली डिफरेंट हैं या रिलीजियस व्यूज़ इंटायरली डिफरेंट हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू बोथ नो कि आप इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, लेकिन बोथ योर हार्ट्स आर इन द राइट प्लेस. बट टू गेट टू दैट पॉइंट, एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील. आपको क्या लगता है इसके बारे में? टू टेल मी अबाउट इट, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE. सो व्हाइल यू डू दैट, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन थिंग जो हमेशा सेम रहती है, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लॉड्स.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है। साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10. 10. 10. How

0: ढक जाए।
1: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार। हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करे, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है @RJKanika पर। कोई गाने सजेस्ट करने हैं, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। जो अगले वाला गाना है उसे इस काउंटडाउन पे पूरे 23 हफ्ते हो चुके हैं। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है। आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है। उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है। आई एम टॉकिंग अनूप जैन, एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक। बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ। प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला, बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए, और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है। कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से, एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग। एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस, दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से। That's why this song sounds so incredible, because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की

Vulnerability को एक्सप्रेस करते हैं तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है। पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनका। एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, स्वागत है आपका. This is the Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanika. Connect with me Instagram पर जाओ. मेरा handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. And now it's time for us to shine spotlight on our indie pick of the week. And आज का गाना spotlight is. गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी song, cause एक तरफ है येलो डायरी, one of the best indie pop bands that we have seen. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही है पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this is the song जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे absolute top favorite vocalist बन गए थे. What a voice, goosebumps आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो feelings बया करना जा रहे हैं ना, वो into 10 times feel होती हैं. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना featuring शिल्पा राव, that was Rose Rose. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी playlist में add कर लीजिए. One of those pop songs जो उतने ही बड़े हुए जितने film के गाने होते हैं. Now countdown पे आगे बढ़ने से पहले, it's time for इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

जी भाई कुमार सानू कॉल्ड तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्का और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज मोहब्बत।

The OG pop star song गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, लाइक एक पॉप एंथम बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था, कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ, जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 3।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, ये गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7। फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबी ना।
1: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। कोक स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैविट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3।
4: निरोग
1: एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 2।

0: गुड़ खलिया गुड़ वाली चा किन पीती
1: वो
0: जिदा नाड़ा किन खिचया किच के मर किन सीट।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा। नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 70.

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वो कैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 8।

I've never cared about box office numbers. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. और एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है. नंबर

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में, दिस इज मोमो के धागे।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 2.

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे। इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं, लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Just bounce.

0: Mirchi, it's hot.
1: Do tole ki mundri la de, tin tole.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

क्योंकि तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। ये वो चाय है जो गर्मा गर्म है विदाउट एक्स्ट्रा कैलोरीज, ये वो कॉफी है जो कभी ठंडी नहीं होती, और ये वो वाला ब्रेकफास्ट है जो हमेशा तुम्हारा फेवरेट है। आज का मिशन काफी सिंपल है, तुम चाय कॉफी ब्रेकफास्ट साथ में लेकर बैठो और तुम्हारे स्लीप मोड से ह्यूमन मोड में आने का सॉफ्टवेयर अपडेट मैं लेकर आई हूँ। अगर अभी फिलहाल तुम कम्यूट शुरू कर चुके हो या वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर चुके हो तो कांग्रेचुलेशंस, आज भी मैं तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक, तुम्हारी लाइफ को मिर्चीदार बनाने वाली हूँ। और एक और बात, ये देसी लोग जो है ना, दुनिया की किसी भी कोने में चले जाए, एक चीज कभी नहीं बदलती है, सुबह घर से निकलते ही मम्मी का इमेजिनरी वॉइस नोट हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, फोन चार्ज है कि नहीं, चार्जर कैरी किया है कि नहीं किया है, आज के सारे इम्पोर्टेंट काम कर लिए कि नहीं कर लिए, कुछ खाना है दोपहर में, भूखे पेट नहीं रहना है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी कंडीशन्ड होती है थैंक्स टू आवर देसी मॉम्स। और इसी देसी वॉर्म्थ के साथ, बॉलीवुड की कुछ मस्ती एंड फन के साथ, गुड वाइब्स के साथ अगले कुछ घंटे बीतने वाले एकदम मिर्चीदार, विद सम मिर्चीदार बैंगर्स, फन स्टोरीज एंड अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये सब मिला के बनेगा परफेक्ट रेसिपी फॉर योर ब्रेकफास्ट, एंड दिस इज योर फेवरेट ब्रेकफास्ट शो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। अब फटाफट से ऑफ एयर मुझसे दोस्ती कर लो, यानी कि ऑनलाइन। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, इट्स मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो करते हैं क्विक टाइम ट्रैवलिंग जर्नी। सबसे पहले चलते हैं 1497 में। आज ही के दिन वास्को द गामा पोर्टुगल से निकले थे इंडिया के सी राउट ढूंढने के लिए। मतलब ओरिजिनल गूगल मैप्स तो वो तब नहीं थे, बंदा बस निकल पड़ा था अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में। फिर 1853 में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जापान के टोक्यो बे पहुंचे। नहीं, ये चैंडलर नहीं है बल्कि दूसरे वाले मैथ्यू पेरी है, और उस मिशन ने जापान के डोर्स दुनिया के लिए खोल दिए। फिर 1947 में न्यू मेक्सिको के न्यूज़पेपर ने हेडलाइन छाप दी कि एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ है। बस फिर क्या था, एलियन तब से इंटरनेट से भी ज्यादा डिस्कस टॉपिक हो चुके हैं। इसी दिन नासा ने 2011 में स्पेस शटल अटलांटिस को उसके फाइनल मिशन पर लॉन्च किया। इंडिया की तरफ देखें तो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। आजादी बस कुछ हफ्तों दूर ही थी यहाँ से। 1999 में कारगिल के दौरान ऑपरेशन विजय में देश ने अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी को सल्यूट किया। हिस्ट्री हमें आज भी एक ही बात सिखाती है कि हर दिन कैलेंडर पर सिर्फ एक डेट नहीं होता, उसके पीछे कहानी भी होती है। और अब आगे की कहानी ये है कि आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बात करने वाले हैं हम कल के बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर के बारे में,
1: मिर्ची वॉच इट। मिर्ची वॉच इट,
0: अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। और क्या ही कमबैक था, डिफेंडिंग चैंपियंस 2-0 से पीछे थे। मेसी का पेनल्टी भी मिस हो गया, लेकिन लास्ट 11 मिनट्स में पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो रीराइट हो गया। यानी कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। क्रिश्चियन रोमेरो, लायनल मेसी और फिर स्टॉपेज टाइम में एंजो फर्नांडिस ने गोल्स करके अर्जेंटीना को 3-2 से क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा दिया। बॉलीवुड राइटर भी बोल रहे होंगे, यार क्या ट्विस्ट है ये, हम मिस कैसे कर गए। लेकिन मैच के बाद कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है। इजिप्ट के कोच हसम हसन ने एलिगेशन लगाया कि ऑफिशिएटिंग और एक्सटर्नल फैक्टर्स ने अर्जेंटीना को फेवर किया है। उन्होंने डिसअलाउड गोल का भी जिक्र किया है। फॉरवर्ड मोस्तफा जीको ने भी टूर्नामेंट को फिक्स्ड बताया है। अब तक फीफा ने इन एलिगेशंस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है। इन शॉर्ट ये आरोप है और इनकी इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं हुई है। और आज वर्ल्ड कप का रेस्ट डे है, क्वार्टर फाइनल्स जो है वो कल से शुरू होने वाले हैं, जब फ्रांस टकराएगा मोरक्को से सुबह 9:30 बजे। तो आज के दिन स्नैक्स स्टॉक कर लो, जर्सी ढूंढ लो और कल के लिए वोकल कॉर्ड्स भी वार्म अप कर लो। अभी फटाफट से मुझे इंस्टा और एक्स पर फॉलो कर लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम हो चुका है वेदर और क्लॉक का। सबसे पहले गुड न्यूज है कि पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट नाम मात्र की बरसात हुई थी, लेस देन 1 मिलीमीटर्स, और अगले 24 आवर्स के लिए फोरकास्ट है जीरो रेन। हाँ जी, अम्ब्रेलास को आज पेड लीव मिल सकती है। अभी फिलहाल टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त अराउंड 64 डिग्रीज फारेनहाइट हो रहा है। वेदर बिल्कुल फ्रेश और मोस्टली क्लियर है। दिन भर स्काईज भी क्लियर रहने वाले हैं, तो सनराइज और सनसेट तक नेचर फुल HD मोड में रहने वाला है। आज का हाई जाने वाला है 85 डिग्रीज फारेनहाइट तक, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से इट विल फील लाइक 89 डिग्रीज फारेनहाइट तक। मतलब कि वेदर बोल रहा है हमसे, मैं सिर्फ वार्म नहीं बल्कि इमोशनली वार्म हुआ आज। और एक फन फैक्ट है, कल का हाई जो था वो 73 डिग्रीज फारेनहाइट था और आज का दिन उससे काफी टोस्टियर होने वाला है। इसीलिए अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, वाटर बॉटल जरूर लेकर जाना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, साथ साथ में अपना SPF 50++++ भी कैरी करना, अपने चेहरे पर मल लो सनस्क्रीन अच्छे से। परफेक्ट वेदर है इवनिंग वॉक के लिए अगर तुम करते हो तो, और बैकयार्ड बारबेक्यू के लिए भी, या फिर बस गाड़ी में विंडोज डाउन करके बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर चला के फुल वॉल्यूम पर मिर्ची सुनने के लिए भी एकदम आदर्श मौसम है। और वैसे वेदर अपडेट्स के साथ साथ आदर्श टाइम है मुझे फॉलो करने का, यानी कि प्रिसिला को। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647224। Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अब टाइम हो गया है सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जून में अनाउंस हुआ ईरान सीज फायर अब खत्म हो चुका है। इसके बाद यूएस ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं, जबकि ईरान ने कहा है कि कई जगहों पर एक्सप्लोजन्स हुए हैं और लोग घायल हुए हैं। सिचुएशन अभी भी फास्ट मूविंग है और दुनिया की नजर उस रीजन पर बनी हुई है। नंबर टू पर सीरिया की कैपिटल दमास्कस में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के होटल के पास दो एक्सप्लोजन्स हुए हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो उस वक्त होटल में नहीं थे बल्कि सीरियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में थे। अथॉरिटीज सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कैनेडियन प्लेयर फेलिक्स ओजे अलियासिम को 5 hours and 15 minutes के मैराथन क्वार्टर फाइनल में हरा दिया है। मैच इतना लंबा था कि लोग नेटफ्लिक्स की तरह पूछ रहे थे, आर यू स्टिल वॉचिंग। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033 647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

98.3 मिर्ची इट्स हॉट कुड़ी कहती बेबी पहला जगुआ ले लो फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो

0: म्यूजिकल डॉक्टर्स।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अपना कैलेंडर रेडी रखो क्योंकि फीफा का नौका ड्रामा अब और इंटेंस होने वाला है। थर्सडे 9th ऑफ जुलाई का मैच फ्रांस वर्सेस मोरक्को 4 PM को देख सकते हो। फ्राइडे 10th ऑफ जुलाई को क्वार्टर फाइनल्स किक ऑफ होने वाले हैं। स्पेन वर्सेस बेल्जियम यू कैन वॉच एट 3 PM। सैटरडे 11th ऑफ जुलाई डबल धमाका होने वाला है। नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड इज एट 5 PM। और फिर डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना वर्सेज स्विट्जरलैंड एट 8 PM। सैटरडे नाइट के प्लान्स तो ऑफिशियली सॉर्टेड हो चुके हैं। उसके बाद ट्यूजडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन 3 बजे शाम को सेमीफाइनल्स होने वाले हैं। और फिर जिस मैच का पूरी दुनिया को इंतजार है, द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल संडे 19th of July 3 PM ऑनवर्ड्स होने वाला है, राइट हियर इन न्यू जर्सी एट मेटलाइफ स्टेडियम। मतलब फुटबॉल का बिगेस्ट पार्टी लिटरली हमारे बैकयार्ड में होने वाला है। और जब फुटबॉल फीवर इतना हाई हो तो आउटफिट भी तो मैच विनिंग होनी चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ ऐसे फेस्टिव आउटफिट्स चाहिए तो न्यू जर्सी फ्रंटियर रास का USA फ्लैगशिप स्टोर अब ऑफिशियली ओपन हो चुका है एट 1655 ओक ट्री रोड एडिसन। चाहे एलिगेंट हैंडलूम साड़ीज चाहिए तुम्हें, ब्राइडल कुटोर चाहिए, स्टाइलिश मेन्स वेयर चाहिए या फिर रेडी टू वेयर आउटफिट्स चाहिए, 70 ईयर्स की इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप अब बिल्कुल तुम्हारे नेबरहुड में अवेलेबल है। मैच देखो, शॉपिंग करो, वीकेंड सक्सेसफुली प्लान करो। और अभी ऑफ एयर टीम बनाते हैं मैं और तुम एट मिर्ची प्रेस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हेलो माय बर्थडे स्टार, अगर आज 8 ऑफ जुलाई को तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, जादू की झप्पी एंड पप्पी। आज के दिन ऑफिशियली तुम्हारे नाम है और मेरा नाम है प्रिसिला। सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अगर आज कोई तुमसे पूछे कि कितने साल के हो चुके हो, ये बताने की जगह स्माइल करके कहना कि आज मेरे साथ कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले यू शेयर योर बर्थडे विथ द वन एंड द ओनली केविन बेकन। ये फुटलूज वाले डांसिंग लेजेंड है एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर। एंड साथ में टीवी लवर्स के फेवरेट मिलो वेंटिमिलिया, वो भी आज के दिन इस धरती पर आए थे। इन्हें तुमने गिलमोर गर्ल्स और दिस इज अस में देखा होगा। और अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो माया हॉक का भी आज ही हैप्पी बर्थडे आता है। साथ साथ में सोफिया बुश भी आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुई थी। एंड म्यूजिक लवर्स के लिए बेक एंड जोन ऑस्बर्न भी आज ही के दिन अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। एंड सेलिब्रिटी शेफ वुल्फगैंग पक भी आज ही के दिन यहाँ पर आए थे। तो अगर तुम भी कैंडल्स ब्लो करते हो आज के दिन या किसी और को बर्थडे विश करना चाहते हो, मुझे अपने शाउट आउट भेज सकते हो, मेरी तरफ से एक बड़ा सा हग ले सकते हो, दे सकते हो और ढेर सारी गुड विशेस। मे दिस ईयर ब्रिंग यू हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड ढेर सारी खुशियां एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ मिर्ची वाइब्स। और बर्थडे सेल्फीज और इनवाइट्स भेजो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अब वो टाइम आ चुका है जब हम पता करें कि गोल्ड एंड सिल्वर क्या कर रहे हैं।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट 4060 डॉलर पर ट्राई आउंस के साथ गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अबाउट 100 डॉलर पर ट्राई आउंस नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली बाय बनती है। राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए आइए राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग को अवेल करें, जिसमें आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के आप पैसे दे सकते हैं, ताकि जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए तो उसका बेनिफिट आपके साथ रहे। और राज ज्वेल्स ऑल्सो गिव्स यू फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू फॉर योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी। आपके पास अगर पुरानी ज्वेलरी है दुनिया में कहीं से भी खरीदी, राज ज्वेल्स उसके सामने फुल एक्सचेंज वैल्यू देते हैं। तो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: एंड देयर यू हैव इट, द अपडेटेड रेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अभी जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बीबी टिकेट टिकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला और टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। सबसे पहले यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने एक पंजाब पुलिस ऑफिसर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अलेजेडली लॉस एंजलिस में रहने वाले एक परिवार से इंडिया में उनके रिलेटिव्स पर झूठे मर्डर चार्जेस लगाने का डर दिखाकर $400,000 एक्सटॉर्ट किए हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी कहा है कि वो उनकी एक्सट्रेडिशन सीक कर रहे हैं। ये एलिगेशंस है और लीगल प्रोसेस अभी फिलहाल जारी है। एंड नंबर टू पर, जकार्ता में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो के साथ ट्रेडिशनल बैम्बू इंस्ट्रूमेंट आंकलुंग बजाया और उस पर बज गया बॉलीवुड का एवरग्रीन क्लासिक फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, क्रिकेट फैंस, ये स्कोर कोड थोड़ा सा दर्द दे सकता है। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में इंडिया को 125 रन से हरा दिया है। इंडिया 76 पर ऑल आउट हो गई, जो T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में उनकी सबसे बड़ी डिफीट बाय रन बन गई है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो भी करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला और तुम्हारे साथ हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और मेरे साथ में है मिर्ची राशि जोन पार्ट पहला।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इरीज यानी मेष राशि। गलती हो जाए कोई बात नहीं, कवर अप से बेटर है ओन अप करना। कॉन्फिडेंस वही होता है जो मिस्टेक के बाद भी स्माइल करके अपनी गलती मान सके। लकी कलर फॉर यू इज चेरी, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी वृषभ राशि, क्रिएटिव मोड ऑन कर लो। ऑफिस प्रेजेंटेशन हो या फिर घर का पैशन प्रोजेक्ट हो, अपना मास्टरपीस खुद ही बनाना है तुम्हें। डस्टिंग कल भी हो सकती है। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 31। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज किसी अपने से बात करते टाइम ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। शायद उन्हें एडवाइस नहीं बल्कि तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स चाहिए। और हाँ, बिना इंटरप्ट किए सुनना ये भी एक टैलेंट होता है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, फ्रेंड्स के साथ मस्ती का मूड है लेकिन बैटरी भी फोन की तरह होती है, कभी कभी ओवर यूज करते हो तो लो पावर मोड में आ जाते हो। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, ऑनलाइन कार्ट को थोड़ा सा रेस्ट दे दो आज के दिन। हर शाइनी चीज एड टू कार्ट नहीं होती है। फ्यूचर वाला बैंक अकाउंट तुम्हें थैंक बोलेगा। लकी कलर इज गोल्डन येलो, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, आज सिर्फ सुनने का दिन है, जजमेंट मत दो। हर इंसान की स्टोरी अलग होती है और कभी कभी एम्पथी ही बेस्ट सुपर पावर होता है। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 1 विद मी प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब तक तुम्हें मिर्चीदार बैंगर्स सुनाती हूँ मैं। इन अ व्हाइल आई विल बी बैक। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज एम RCHIPRIS। WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot. Oh God, one more email.

0: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसुला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो चुका है मिर्ची पर राशियों की बात करने का।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, चैलेंज आ रहा है एंड गेस व्हाट, तुम उसके लिए रेडी भी हो। अपना खुद का लेवल अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। लकी कलर इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते हैं एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अग्री टू डिसअग्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जिसे सीखना जरूरी है, और अपना दिल जो है उसे हल्का रखो। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ऑफिस का प्लान तुम्हारे हिसाब से ना चले तो कोई टेंशन नहीं, कभी कभी डिटूर्स ही बेस्ट डेस्टिनेशंस तक ले जाते हैं। लकी कलर फॉर यू इज स्टील, लकी नंबर इज 6। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज इमोशंस थोड़े से लाउडर हो सकते हैं। सब प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, थोड़ा सेल्फ केयर भी कर लो यार, बॉस मोड में आ जाओ। लकी कलर इज स्लेट कलर एंड लकी नंबर इज 8। That rhymed. Aquarius यानी कुंभ राशि, आइडियाज की बारिश हो रही है, लेकिन आज सिर्फ एक आइडिया चूज करो जो फ्यूचर में वॉलेट को भी स्माइल करने पर मजबूर करेगा। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 42। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज यानी मीन राशि, रिस्पेक्ट फ्री होता है और रिटर्न्स प्राइसलेस होते हैं। आज काइंडनेस में इन्वेस्ट करो, यूनिवर्स कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तुम्हें रिटर्न करने वाला है। लकी कलर इज ऑफ व्हाइट, लकी नंबर इज 16। एंड दैट्स द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट टू विथ मी प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। बने रहो मेरे सोशल्स पर भी, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

और इसी के साथ मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप का टाइम आ चुका है। मेरा नाम है प्रिसल और जाने से पहले तुम एक फिल्मी कहानी सुनाकर जाती हूँ। कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पूजा भट्ट यानी कि आलिया भट्ट की स्टेप ओल्डर सिस्टर, उन्होंने रिसेंटली शेयर किया कि उन्हें ब्लॉकबस्टर आशिकी ऑफर हुई थी। प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और उनके चाचू साइनिंग अमाउंट लेकर उनके घर तक भी पहुंच गए थे, लेकिन पूजा ने फिल्म रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना ज्यादा जरूरी लग रहा था। उन्होंने मजाक में याद भी किया कि उसके बाद मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट को फोन करके कहा, योर डॉटर इज गॉन क्रेजी। एंड कभी कभी ना लाइफ में जो डिसीजंस उस वक्त बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, बाद में जाकर हमें रियलाइज होता है कि ये या तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गए या हमारी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक बन गए हम। इसीलिए लाइफ को रिवाइंड नहीं करना चाहिए, बस हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते जाना चाहिए। और स्पेशली अगर करियर की बात हो, अपना नेक्स्ट चैप्टर लिखने का मूड हो तुम्हारा, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बन सकते हो थ्रू एम्स एडुकेशन। प्रोग्राम्स जो है वो फुली ऑनलाइन भी है और ऑन कैंपस भी है। तो अगर करियर स्विच करना है या करियर बूस्ट का प्लान है तुम्हारा, तो कॉल करो 9082200002 पर। आई विल रिपीट, 9082200002 इज द नंबर फॉर एम्स एडुकेशन। या फिर उनकी वेबसाइट विजिट करो aimseducation.edu, दैट्स aimseducation.edu। और हो सकता है कि तुम्हारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो बस एक फोन कॉल दूर हो। हां दोस्त, इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो चुका है अभी तुमसे दूर। आऊंगी तुम्हारे पास कल सुबह सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम शो लेकर विद सेम मिर्ची वाइब्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स, योर ड्राइव और योर चाय ब्रेक, या कभी कभी तुम्हारी ट्रैफिक थेरेपी भी मैंने अगर की हो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी। और फिर भी हमारी दोस्ती पक्की हो सकती है। फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल के लिए डाटा बाय बाय है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। अकड़ी बकड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड

0: 2 रुपए में पैकेट भर के चिप्स खाना याद है आपको?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हुआ यूं कि कॉन्वर्सेशन से 2 रुपए का वो चिप्स का पैकेट याद आ गया, जो ये जो 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के हवा वाले चिप्स वाले पैकेट्स जो हैं, उनके लॉन्च से पहले मार्केट में आया करता था, जिसे हम वेफर्स कहा करते थे। सिंपल तौर तरीके से कि यार आलू है, फ्राइड आलू, और उस पर नमक लगा हुआ है, और वाह क्या स्वाद हुआ करता था यार उसका। इनफैक्ट स्वाद क्या, उसकी तो क्वांटिटी भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। एंड देन आई रियलाइज्ड, मैंने कहा यार ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हम कैसे इधर से उधर हो गए, नहीं वक्त नहीं लगा हमें पलटी खाते हुए। अब पता है ये वही चिप्स हैं जो कि कभी कहीं बर्थडे पार्टी में मिल जाया करते थे ना, तो मैं केक के साथ वेफर्स को कॉम्बिनेशन बनाकर और फिर खाया करती थी। हमेशा से ही मेरा ये मामला सेट रहा है, और ये मेरी बचपन की आदत है यार, केक और वेफर से लेकर आज तक। अगर मामला बहुत मीठा हो जाता है ना, तो कुछ नमकीन तो चाहिए ही होता है। लेकिन अभी यादों को मीठा नमकीन करने की बारी आ चुकी है। मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बागबान की सक्सेस के बाद द ट्रियो ऑफ अमित जी, हेमा जी एंड सलमान खान वाज अगेन सीन इन द फिल्म बाबुल।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यू नो व्हाट, बाबुल बनाने से पहले रवि चोपड़ा के दिमाग में था कि वो अमित जी और सलमान खान को लेकर एक पीरियड ड्रामा बनाएंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया पर बेस्ड। बट इवेंचुअली उन्होंने बनाई बाबुल, विच आई थिंक वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक जो उन्होंने छुआ था, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ उन्होंने अपनी मूवी में ही नहीं छुआ, इस टॉपिक ने काफी सारे दिलों को भी छुआ। द स्टोरी ऑफ अ डॉटर इन लॉ एंड अ फादर इन लॉ, जहाँ पे फादर इन लॉ गेट्स हर डॉटर इन लॉ मैरिड। एंड खैर, हम तो छोटे थे उस टाइम पर, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एज अ सोसाइटी हमने कितने चेंजेस देखे। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हमारी जो हिंदी फिल्में है ना, वो हमारी सोसाइटी का आईना जरूर होती है, और कहीं ना कहीं ये एक चेंज जरूर लेकर आती है। एंड उस टाइम पर ऐसे टॉपिक का छिड़ना वॉज अ बिग डील फॉर श्योर। एंड आई एम सो ग्लैड कि रवि चोपड़ा ने प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया को ना लेकर इंडिपेंडेंट और मॉडर्न इंडिया के माइंडसेट को चेंज करने का थॉट लिया। बट पता है क्या, उनका पहला थॉट रानी मुखर्जी नहीं थी इस फिल्म के लिए। सबसे पहले तो बी आर चोपड़ा चाहते थे कि सुष्मिता ये फिल्म करें, लेकिन सुष्मिता के पास डेट नहीं थी, तो फिर ये फिल्म काजोल के पास गई, फिर तबू के पास गई, एंड देन इवेंचुअली रानी मुखर्जी के पास गई। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, इस फिल्म का जो वार्डरोब है वो मनीष मल्होत्रा ने नहीं किया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का 36 का आंकड़ा था, द ओनली रीजन वॉज कि मनीष मल्होत्रा ऑलरेडी रानी के लिए कभी अलविदा ना कहना की वार्डरोब कर चुके थे, और उन्हें अपने वार्डरोब में कुछ नयापन चाहिए था, जिसकी वजह से शी आस्क्ड द मेकर्स टू रोप इन सब्यसाची मुखर्जी। एंड आई रियली लाइक्ड रानी मुखर्जी की साड़ी वाला वो लुक, जिसमें कि उन्होंने फुल स्लीव्स की ब्लाउजेस का ट्रेंड शुरू किया था यार। कमिंग अप मोर ऑन दिस फिल्म, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब बाबुल शूट हो रही थी ना, एट दैट टाइम सलमान खान और जॉन इब्राहिम के बीच में दंगल चल रहा था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड हुआ यूं कि इन दोनों का कोई इंटरनेशनल डांस टूर चल रहा था, जहां पर सलमान खान और जॉन इब्राहिम के बीच में कुछ तो भी बात हुई और डिफरेंसेस क्रिएट हुए। अब यही डिफरेंसेस सेट पर भी आ गए जब ये फिल्म शूट होनी थी, जिसकी वजह से इस फिल्म की जो स्केड्यूल है वो काफी सारे डिलेज देख चुका था। बट थैंक गॉड इवेंचुअली ये फिल्म का रैप अप हुआ, फिल्म पूरी बनी और रिलीज भी हो गई। बट वेरी इंटरेस्टिंगली आई शुड ऑल्सो लेट यू नो कि हेमा मालिनी भी बाबुल नाम की एक फिल्म को डायरेक्ट करना चाह रही थी, वेयर इन शी वांटेड टू रोप इन रेखा, ईशा देओल एंड अभिषेक बच्चन। और इस फिल्म में वो मदर एंड डॉटर का रिलेशनशिप बताना चाह रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि ये फिल्म वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो बाबुल रवि चोपड़ा ने बनाई वो ज्यादा अच्छी थी या फिर हेमा जी का ये जो आइडिया था जो कभी आगे नहीं बढ़ पाया वो ज्यादा अच्छा होता। वेल, अगर फिल्म रिलीज होती तो ही हमें पता लगता, बट आई स्वेयर हाँ आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अपने टाइम से निकलता हुआ चांद भले ही हम मिस कर दिया करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम देश में निकला होगा चांद टीवी पर जरूर देखा करते थे।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और NRIs की लाइव्स पर मूवीज तो काफी बनी, लेकिन सीरियल बना देश में निकला होगा चांद, पम्मी और देव की लव स्टोरी। आए हाय, वरुण बदोला की तो मैं वैसे ही फैन थी आफ्टर अस्तित्व, और जब उन्हें देव के रूप में देखा ना, तो मेरे निक्कू से दिल ने भी फैन गर्ल से आई हैव अ क्रश ऑन हिम बोलना शुरू कर दिया था। और संगीता घोष, आई जस्ट लव्ड हर वार्डरोब यार, उनका वार्डरोब रिमाइंडेड मी ऑफ चांदनी की श्रीदेवी। स्टोरी भी बड़ी प्यारी सी थी यार, पम्मी एक प्यारी सी लड़की जो कि विदेश में रहती थी लेकिन अपने देश को दिल में लिए घूमती थी। अपनी कजन की शादी में आई हुई पम्मी चंडीगढ़ में मिलती है एक लड़के से जिसका नाम था देव, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट था कि पम्मी की तो ऑलरेडी एक अच्छे खासे डॉक्टर से मंगनी हो चुकी है जो कि लंदन में ही रहता है, नाम है उसका रोहन। रोहन बुरा लड़का नहीं है, लेकिन क्या है कि पम्मी और देव की आंखें मिल चुकी हैं, और जब ये नजरें मिली है ना, आंखें हुई 2 से 4 और दिल हुए 2 से 1। बस यही एक वो चीज थी जिसने कि हमें टीवी से चिपका दिया था कि क्या देव और पम्मी की शादी होगी। लेकिन यार वो जो शादी वाला सीक्वेंस था ना, जहाँ पम्मी और देव की नजरें मिली थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब मैट्रिमोनियल साइट्स का काम शादियां ही किया करती थी कि जी फलानी ढिमा की शादी में मिले, नजरें मिली और फिर कुंडलियां भी मिल गई, काम खत्म, आई मीन लाइफ सेट। एंड दैट वाज वन रीजन कि ये सीक्वेंस वाज एक्साइटिंग फॉर द इंडियन ऑडियंस एज वेल। आज के टाइम पर शादी टू अस इज मोर अबाउट लहंगाज एंड खाना पीना एंड नाचना गाना। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि यार वहाँ पे गुड लुकिंग लड़के होंगे कि नहीं होंगे, मतलब कभी कभी दे भी देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एक टाइम था कि शादियों में ही अच्छे लड़के मिला करते थे, इनफैक्ट अच्छी लड़कियां भी मिला करती थी। मैं तो लड़कियों की POV से बोल रही हूँ। एनीवेज, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बस इतना सा ख्वाब है फिल्म का ये गाना मुझे ना बड़ा प्यारा सा लगता है यार। कितना क्यूट सा गाना है यार, जहाँ पर एक छोटी सी रानी मुखर्जी और एक लंबे से अभिषेक बच्चन हंसते गाते मुस्कुराते चारों तरफ हरियाली उनके, और हरियाली के बीच में इस गाने को गुनगुनाते हुए नाचते हुए इस गाने में दिखाई दे रहे हैं। और बात भी कितनी सिंपल है यार कि कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए, जहाँ पहला हो हर वो नजारा, पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भंवरा वो पागल, जहां पहला प्यार हो। ओए होए होए होए, इस गाने को सुन करना ऐसा ही लगता है कि यार लाइफ कितनी सिंपल है। नहीं
1: सारा जमाना सारा का दीवाना,
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, 90s से रिलेटेड काफी सारी यादें और बातें हमें सिंपल लगती हैं, लेकिन एक चीज है जो कि 90s से रिलेटेड है और उसे कॉम्प्लिकेट करने में मुझे बड़ा मजा आता है, विच इज मान ना मान करो गानों की पहचान। और यहाँ आज फिर मैंने दो गानों को आपस में मिला दिया है, उनको ट्विंस बना दिया है, ताकि आप थोड़ी सी जद्दोजहद करके इन्हें पहचान पाओ कि ये दो गाने असल में है कौन से। एंड हियर वी गो।

बस अब तो सिंपल है यार लाइफ। अब आपको डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे फटाक से भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s और अर्ली 2000 में ये आदत सी बन गई थी कि अगर किसी मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही बेसिक प्लेन जेन और सिंपल है तो यार उसमें एक तड़कता भड़कता गाना तो होना ही चाहिए, और ऐसा ही कुछ सिर्फ तुम के मामले में भी हुआ था।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। सिर्फ तुम में दिलबर ऐसा गाना बना था कि उसका तो रीमेक वापस से अभी रिसेंटली बनाया, जो एक्चुअली किसी को ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, लेकिन ये ओरिजिनल भी ओरिजिनल नहीं था। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो गाना था, दिस वॉज इंस्पायर्ड बाय अ पाकिस्तानी गाना जो कि आधा पंजाबी में था और आधा हिंदी में था। गाना कुछ यूं है।

0: रिंग्स अ बेल।
1: हालांकि इस गाने की हकीकत जानने के बाद दिल तो मेरा भी थोड़ा सा टूटा ये सोचकर कि यार ये गाना ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी कि सिर्फ तो मूवी बेचारी बिल्कुल ही फ्लॉप सी थी, और अगर उस फिल्म को किसी ने इस दुनिया में याद रखा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस गाने के बेसिस पे है। तो चलो जी, जाने दिया इस बात को भी, और अभी आने दिया अगले गाने को। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Basta, what is that?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, there used to be a time जब vocabulary भी छोटी होती थी और type of bags की choice भी। क्या आपने कभी बैग को बस्ता बोला है? देखो यार, हमें तो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिट करवाया गया था, तो आई कुडंट यूज दिस वर्ड, लेकिन मेरे घर के काफी सारे बड़े यूज टू यूज दिस वर्ड। इनफैक्ट हमारे ऑटो वाले जो भैया थे वो भी बैग को बस्ता ही कहा करते थे, और मेरी ट्यूशन टीचर वो भी हमारे बैग को बस्ता कहा करती थी कि बेटा बस्ता ले लिया, बेटा बस्ते में अपनी बुक्स और पेंसिल्स रख ली। लेकिन ये जो बस्ता था ना, ये बस्ता ही लगता था यार, अ रेक्टेंगुलर शेप बैग जिसके दो बकल्स होते थे या वो मेटल वाले बटन्स, सबसे बाहर दो पॉकेट्स होती थी, देन अंदर किताबें रखने की जगह, एंड दैट्स इट। नो टू मेनी जिप्स एंड पॉकेट्स टू कंफ्यूज अस, जिससे कि हम कभी अपने रबर और पेंसिल ढूंढते ढूंढते पगलाए नहीं, अंटिल वी हैड अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स टू चूज फ्रॉम, अ स्लिंग बैग, अ टोट बैग, अ शोल्डर बैग एंड व्हाट नॉट। एंड यू नो व्हाट, इन सब में हम लड़कियों को काफी मेहनत के बाद एक रबर बैंड या एक छोटी सी लिपस्टिक मिल पाती है। Doesn't matter how big or small the bag is, लेकिन सामान ढूंढना हमेशा ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है, ये जो बस्ता था ना, ये लड़के का हो या लड़की का हो, एक चीज इनमें कॉमन जरूर हुआ करती थी, और वो थी टिफिन से बहते हुए सब्जी और अचार के तेल के दाग, जिसकी स्मेल मैं आज भी बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot. घर से

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर तकियों की दीवारों से बने घर,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज पता है, खुद का घर बनाने की एक अलग ही जंग लड़ रहा है जमाना। वो जमाना जो कभी तुम से एक घर बनाकर खुश था। तुम्हारी दीवारें ईंट पत्थर की और खून पसीने की नहीं थी, पर सुकून और वार्मथ की जरूर थी। उनमें लाइट नहीं थी, लेकिन वो हमारी मुस्कान से जगमगाता था। साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन हमारी हंसी से खिलखिलाता था। हमारी इमेजिनेशन कितनी गजब थी यार, कि तुम्हें बनाकर हम सोचा करते थे कि हमने फेरी टेल से निकला कोई बड़ा सा कासल बना दिया। और आज इंटीरियर डिजाइनिंग की मैगजीन से इंस्पायर्ड घर भी सेट कर देना तो भी तसल्ली नहीं होती कि नहीं नहीं नहीं यार, परफेक्ट नहीं है। अच्छा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। कितने संतुष्ट थे ना हम, तुम्हें बनाते, कहानियां बनाते और खुश रहते। यू नो, तकियों की दीवारों वाले घर, तुमने हमें एक बात नहीं बताई, और अगर बोल पाते ना तो जरूर बताते कि घर परफेक्ट नहीं, थोड़ा तहस नहस ही अच्छा लगता है। घर वही घर लगता है जहाँ थोड़ी कमी हो, तभी तो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है बिकम्स अ परफेक्ट फैमिली सॉन्ग। नहीं क्या, तुम्हारी यादों में सुकून पाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना। मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: प्रसून जोशी ने जो लिख दिया सो लिख दिया, नरेश अय्यर ने जो गा दिया सो गा दिया, और रहमान सर ने जो म्यूजिक बना दिया सो बना दिया, और यूं आया कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
1: मिर्ची 90s कैसेट।
2: इस गाने ने सिर्फ फिल्म ही नहीं, हम में भी एज यंग भारत जान डाल दी थी। इस गाने को सुनकर ना आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई फील कि जब कभी आपको ये लगे ना कि आप सिचुएशन से हार रहे हो एंड इट्स टाइम टू गिव अप, इस गाने को सुनना, असर होगा, क्योंकि इस गाने की ये लाइंस बड़ी इन्फ्लुएंशियल लगती है मुझे।

एंड यस, जब तक अपने अंदर के अंधेरे में झांक कर ये नहीं बोलेंगे ना, तो रोशनी कहाँ से आएगी। जब ये गाना हम मिलेनियल किड्स को तब जोश से भर सकता था जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं। बदला कुछ नहीं है बॉस, बस अब हमें खुद को मुझसे नहीं होगा बोलने की आदत हो गई है। लेकिन ये भी जान लो, ऐसी आदतों से जितनी जल्दी निजात पाएंगे ना, उतना ही जल्दी आगे जा पाएंगे। एंड नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। यहाँ के अलावा आप मुझे ढूंढ सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कपूर खानदान की बहू हैं, ऋषि कपूर की वाइफ हैं, रणबीर कपूर की मम्मा हैं, आलिया भट्ट की सास हैं, राहा कपूर की दादी हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी मैं बात कर रही हूँ नीतू सिंह की। उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमको पता है, वो शायद इसीलिए क्योंकि जब वो अपने करियर की पीक पे थी उन्होंने शादी कर ली और कपूर खानदान की बहू बन गई, अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया। वैसे इनका असली नाम है हरनीत कौर। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो बेबी सोनिया सिंह नाम से किया, उसके बाद बड़ी होके जब फिल्में करने लगी तो नीतू सिंह के नाम से। आज इन्हीं के बारे में करेंगे बातें, ऑफ कोर्स इनके गाने भी सुनेंगे पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

भाई नीतू सिंह बेसिकली दिल्ली की हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब वो 5 साल की थी उनके पेरेंट्स दिल्ली से बॉम्बे आ गए थे। उनकी मदर राजी सिंह वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उन्होंने काफी कोशिश भी की, फिल्मों में कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी किया और साथ ही साथ अपनी बेटी के लिए भी एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच जब नीतू सिंह जी के फादर की डेथ हो गई तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नीतू सिंह की मम्मा ने और एक्टिवली उनके लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। एज अ चाइल्ड एक्टर नीतू सिंह ने काफी फिल्मों में काम किया है, करेंगे उसके बारे में भी बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई नीतू सिंह जब 7-8 साल की थी उनको वैजयंती माला जी ने नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वैजयंती माला जी का एक डांस स्कूल था जिसमें नीतू सिंह एज अ चाइल्ड जाती थी। उन दिनों वैजयंती माला जी की एक फिल्म के लिए चाइल्ड एक्टर को ढूंढा जा रहा था। ये फिल्म थी 1966 की सूरज, जिसमें वो गाना है ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, वो वाली फिल्म। तो इस रोल के लिए नीतू सिंह को, जो तब बेबी सोनिया थी, साइन कर लिया गया। फिर लेट 60s में काफी फिल्मों में इन्होंने एज चाइल्ड एक्टर काम किया। 10 लाख, 2 दूनी 4, वारिस, घर घर की कहानी, पवित्र पापी एंड सबसे पॉपुलर, सबसे प्यारा रोल इनका दो कलियां फिल्म में, जहां पे इन्होंने दो जुड़वा बहनों का रोल किया था। इतनी अडोरेबल है ना नीतू सिंह उसमें, इतनी अडोरेबल, सदके वारी जाऊं। मतलब वो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है इन्हीं की वजह से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yes!

0: नीतू सिंह जब सिर्फ 8 साल की थी तब उनकी पहली फिल्म आई थी एज अ चाइल्ड एक्टर।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: जी, बॉम्बे में वो वैजयंती माला जी के डांसिंग स्कूल में थी जहाँ पे वैजयंती माला जी ने उनको नोटिस किया और वो 1966 की फिल्म सूरज में कास्ट हुई। उसके बाद काफी फिल्में की इन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर, इंक्लूडिंग द वेरी फेमस दो कलियां। 1970 तक ये एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती रही बाय द नेम ऑफ बेबी सोनिया। उसके बाद इनकी फैमिली फिर 3 साल के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई बॉम्बे से। ओरिजिनली वो दिल्ली से ही पहले आए थे। जब नीतू सिंह 5 साल की थी तब वो दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। एंड देन अगेन जब नीतू सिंह 15 साल की थी इनकी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। स्पेशली इनकी मदर एक्टिवली इनके लिए काम ढूंढने लगी और तब इनको इनकी पहली फिल्म मिली 1973 में रिक्शा वाला, जिसमें रिक्शा वाला थे रणधीर कपूर। बिल्कुल मैच नहीं होता, बिल्कुल सूट नहीं होता, इसलिए फिल्म भी फ्लॉप हो गई। रणधीर कपूर यानी कि इनके जेठ जी के साथ इन्होंने काफी फिल्में की थी, तब थोड़ी ना पता था कि आगे जाके जेठ जी बनने वाले। वेल, इनकी एक साथ में मूवी थी ढोंगी जिसका यह गाना बहुत सही है, इसका रीमिक्स भी काफी पॉपुलर हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

नीतू सिंह जी हिंदी फिल्मों के फेम गेम में कब आई? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो, एज अ चाइल्ड एक्टर तो उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म दो कलियां, उसमें वो इतनी अडोरेबल लगी हैं, वो बहुत पॉपुलर हुई थी तब एज बेबी सोनिया, तब वो काम करती थी। फिर बड़ी होके एज एन अडल्ट तो नहीं बोलेंगे, वो 15 साल की थी एक्चुअली जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी एज अ ग्रोन अप, विच वॉज रिक्शावाला इन 1973, विच फ्लॉप्ड। लेकिन उसी साल शी बिकेम इमेंसली पॉपुलर विद दिस सुपर डुपर हिट फिल्म जिसमें उनका सिर्फ एक गाना था। एक्चुअली पूरा रोल उनका था, लेकिन फिल्म की लेंथ इतनी बढ़ गई थी कि उनका रोल कट करना पड़ा, बस ये गाना रखा गया। लेकर हम दीवाना दिल, यादों की बारात फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Energy. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

आपको पता है नीतू सिंह की मम्मा खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका नाम था राजी सिंह और नीतू सिंह के करियर को वही कंट्रोल करती थी, उनके कॉस्ट्यूम्स मेकअप का ध्यान रखती थी। इनफैक्ट नीतू सिंह की एक दो फिल्मों में उन्होंने ऐसे छोटा मोटा रोल भी किया है, लेकिन एक मेजर रोल जो उन्होंने नीतू सिंह की लाइफ में निभाया वो था उनकी लव स्टोरी के अगेंस्ट विलन का। जी तो अमर अकबर एंथनी में जैसे तैयब अली होते हैं जो अकबर और सलमा का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करते हैं, रियल लाइफ में ये राजी सिंह जी थी नीतू सिंह की मामा जो ऋषि कपूर और नीतू सिंह का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर रही थी, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि कपूर फैमिली के मैन काफी रूमर्स में स्कैंडल्स में फंसते रहते हैं और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के करियर में इस तरह का कोई लफड़ा हो। इनफैक्ट जब नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ डेट पर जाती थी तो साथ में उनकी एक कजिन भी जाती थी चेक रखने के लिए, पर धीरे धीरे धीरे फिर वो मान गई। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

नीतू सिंह और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात 1974 की फिल्म जहरीला इंसान के सेट्स पर हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तब मात्र 15-16 साल की थी नीतू सिंह और ऋषि कपूर इनको बहुत बुली किया करते थे। ये बहुत इरिटेट और अनॉय हो जाती थी उनसे। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती मतलब ऐसी कि अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ऋषि कपूर नीतू सिंह से मदद लेते थे। कभी गर्लफ्रेंड को टेलीग्राम भेज, कभी उसके घर पे फोन लगाओ, उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो गर्लफ्रेंड को बुलवाओ, इस तरह के काम। लेकिन ये दोस्ती प्यार में कब बदली, कौन सी फिल्म की शूटिंग करते हुए, करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात तो 1973-74 में हुई थी जहरीला इंसान फिल्म के सेट्स पर, लेकिन उनका प्यार हुआ था कभी कभी फिल्म के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उससे पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक्चुअली दोस्त से पहले भी इनका बैंटर चलता था। ऋषि कपूर काफी बुली किया करते थे नीतू सिंह को, और दोस्त ऐसे बने कि ऋषि कपूर की जो तब गर्लफ्रेंड थी उनसे उनका ब्रेकअप हो गया था, तो उनको मनाने के लिए वो नीतू सिंह की हेल्प लेते थे। वेल, वो गर्लफ्रेंड तो नहीं मानी, लेकिन ऋषि कपूर साहब को नीतू सिंह के लिए उनकी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो गया। उस टाइम ये दोनों इतनी फिल्में साथ में कर रहे थे कि एक दूसरे के ऐसे यूज्ड टू होने लग गए थे। नीतू सिंह जी को भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था, तो कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये प्यार की आग दोनों तरफ बराबर टाइप की लगी हुई थी, लेकिन कोई कन्फेशन नहीं हुआ था। फिर कभी कभी फिल्म के बाद जब ऋषि कपूर साहब एक और फिल्म की शूटिंग यूरोप में कर रहे थे, तो वो नीतू सिंह को बहुत मिस करने लग गए। तब उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेजा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मुझे अकेला लग रहा है। एंड दैट वाज सॉर्ट ऑफ लव कन्फेशन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अगर आप सारा जमाना हसीनों का दीवाना, यस याराना फिल्म का जो गाना है, इसका आप वीडियो देखे तो देखेंगे कि आधे गाने में नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के साथ हैं, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सॉन्ग में वो गायब हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसकी बड़ी ना क्यूट सी वजह है। तो इस गाने की जब शूटिंग हो रही थी 1979 में, तब ऋषि कपूर नीतू सिंह की नई नई सगाई हुई थी और सीन कुछ ऐसा हो रहा था, कोलकाता में ये शूटिंग हो रही थी और फोन्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो ऋषि कपूर नीतू सिंह की बात ही नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इस गाने की शूटिंग के टाइम पे शी ब्रोक डाउन एंड रोने लग गई। तब अमिताभ बच्चन साहब ने इनसे पूछा कि क्या हो गया, उन्होंने बताया कि ये हो गया, याद आ रही है, बात नहीं हो पा रही है। तो अमिताभ बच्चन साहब ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उनकी मुंबई वापसी की टिकट वगैरह करवाई और इसीलिए वो आधा गाना नीतू सिंह के बगैर ही शूट हुआ। चलिए इस फिल्म का एक और ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं, जिसमें सारे गाने में नीतू सिंह जी दिखाई देती हैं अमिताभ बच्चन के साथ। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: नीतू सिंह को अपने ग्रोइंग अप इयर्स में पता है किस पे क्रश था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्हें क्रश था शशि कपूर पे। जी, उनको पता थोड़ी ना था कि आगे जाके वो उनके देवर ससुर बनने वाले हैं। और देखो ऐसा है यार, प्यार किसी से भी हो, जो क्रश होता है ना, खास करके ग्रोइंग अप इयर्स वाला, उसकी अपनी एक अलग जगह होती है, वो जगह कोई ले नहीं सकता है। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको अपने क्रश से अटेंशन मिल जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। नीतू सिंह को तो अपने क्रश के साथ फिल्में करने को मिल गई, उनके साथ रोमांटिक गाने शूट करने को मिल गए। तो सुन लेते हैं दीवार फिल्म का ये गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह

आपको पता है नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ अपनी शादी में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कब हुई थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तब हुई थी जब 1985 में डिंपल कपाड़िया की वापसी हुई थी ऋषि कपूर के साथ सागर फिल्म में। बिकॉज बॉबी के टाइम पे इन दोनों के अफेयर के रूमर्स थे और उस वजह से नीतू सिंह काफी घबराई हुई थी। वैसे नीतू सिंह जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज में ऋषि कपूर जी की शादी के बाहर जो इन्वॉल्वमेंट्स थे उनके बारे में बात की है और ये भी कहा है कि वो कभी इतनी इनसिक्योर नहीं होती थी, बिकॉज शी वॉज श्योर कि वो लौट के उनके पास ही आएंगे। लेकिन ये डिंपल कपाड़िया वाले टाइम पे, सागर के टाइम पे, शी वॉज वेरी स्कैर्ड। और जबकि यहाँ सच ये था कि इस टाइम पे ऋषि कपूर एंड डिंपल कपाड़िया वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वेल ये बात और इसके अलावा और भी बहुत ही तड़कती भड़कती ढंटड़ैन टाइप की बातें ऋषि कपूर जी ने इस बुक में रिवील की हैं या कन्फेस की हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्च।

नीतू सिंह जी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना इंटरनेट पे, वो ज्यादातर उनकी कपूर फैमिली से जुड़ी हुई है। यू नो, कपूर खानदान की बहू, ऋषि कपूर की वाइफ, रणबीर कपूर की मम्मा, आलिया भट्ट की मदर इन लॉ। लेकिन उनके बारे में शी एज अ पर्सनालिटी बहुत कम इंटरव्यूज या कम इन्फॉर्मेशन है, जिसकी मेन वजह ये है कि जब भी अपने करियर की पीक पर थी 1970s, नीतू सिंह वॉज एवरीवेयर, पता नहीं कितनी सारी फिल्में। एंड ये सब छोड़ छाड़ के 1980 में इन्होंने ऋषि कपूर से शादी कर ली। वैसे तो ऋषि कपूर साहब ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में ये रिवील किया है कि उन्होंने कभी इनको फोर्स नहीं किया अपना करियर छोड़ने के लिए, लेकिन साथ में ये भी कन्फेस किया है कि इन्होंने कभी इनको ज्यादा इनकरेज भी नहीं किया वापस यू नो, फिल्मों में काम करने के लिए, क्योंकि तब वो एक बहुत बड़े मेल शोविनिस्ट थे और बाद में सुधर गए थे। ये सब उन्होंने लिखा अपने बारे में, मैं नहीं बोल रही। और बाद में कई ओकेजन पे ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को इस बात के लिए शुक्रिया भी कहा। एक्चुअली नीतू सिंह जी ने कहीं एक इंटरव्यू में शायद ये कहा भी था कि क्योंकि वो बचपन से काम कर रही थी, उन्होंने अपनी लाइफ जी ही नहीं थी और इसीलिए ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: इनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सनशाइन गर्ल बोल सकते हैं।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय, मिर्च पे ट्यून हो आप। एंड आज मैं बात कर रही हूँ द बर्थडे गर्ल नीतू कपूर मैम के बारे में। भाई, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। फिर उसके बाद रफू चक्कर, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर, एंथनी, ऐसे ऐसे क्लासिक्स में उन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग एंड मिलियन डॉलर स्माइल से सबका दिल जीता है। रियल लाइफ में जितने एफर्टलेस थी, रियल लाइफ में उतनी ही ग्रेसफुल। और फिर आई बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक, नीतू कपूर और ऋषि कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो रियल लाइफ में भी तब्दील हो गई। एंड इट वॉज डेफिनेटली अ ब्लॉकबस्टर। वेल, शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन कमबैक भी ऐसा किया कि सबने कहा क्लास, कभी आउट ऑफ, अमर अकबर, एंथनी, ऐसे ऐसे क्लासिक्स में उन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग एंड मिलियन डॉलर स्माइल से सबका दिल जीता है। रियल लाइफ में जितने एफर्टलेस थी, रियल लाइफ में उतनी ही ग्रेसफुल। और फिर आई बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक, नीतू कपूर और ऋषि कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो रियल लाइफ में भी तब्दील हो गई। एंड इट वॉज डेफिनेटली अ ब्लॉकबस्टर। वेल, शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन कमबैक भी ऐसा किया कि सबने कहा क्लास, कभी आउट ऑफ लाइफ में भी तब्दील हो गई। एंड इट वॉज डेफिनेटली अ ब्लॉकबस्टर। वेल, शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन कमबैक भी ऐसा किया कि सबने कहा क्लास, कभी आउट ऑफ शाइनिंग।

0: प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। यार बाबू मोशाय, आप कहाँ ही जा रहे हो? नॉटी नॉटी। चलिए दिमाग को वापस लाइए, क्योंकि यहाँ इस गेम में लगाना है ना दिमाग। सो बेसिकली द ड्रिल इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजिए, ताकि कॉल करके मैं आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है जूलिया। तो जूली जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे?
3: अभी तो हम ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे हैं।
0: अरे वाह, हम आप क्या पटना बिहार झारखंड?
3: पटना।
0: अरे रे, हम लोग तो एक ही शहर के निकले जी। तो क्या गेम शुरू करने के लिए तैयार हैं आप?
3: हाँ, हम तैयार हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई की बारिश में हीरो टेलीफोन बूथ पे पापा से बात कर रहा है और सामने दिखती है हीरोइन बच्चों के साथ बारिश में मस्ती करती हुई।
3: दिया मिर्जा।
0: ओहो, कौन सी फिल्म है, नाम बताइए।
3: रहना है तेरे दिल में।
0: क्या बात है। तो रहना है तेरे दिल में रीना से उसका नकली फियांसे बनके कौन मिलता है?
3: माधवन।
0: आर माधवन लड़कियों का वशीकरण किस फिल्म में करते हैं?
3: शैतान।
0: बहुत बढ़िया। शैतान में ज्योतिका के हस्बैंड कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो सरदार जी बने हैं?
3: सन ऑफ सरदार।
0: सन ऑफ सरदार में संजय दत्त की बहन कौन है?
3: संजय दत्त की बहन ये है सोनाक्षी सिन्हा।
0: सोनाक्षी सिन्हा को थप्पड़ से डर किस फिल्म में नहीं लगता?
3: दबंग।
0: दबंग में रॉबिन हुड पांडे कौन है?
3: सलमान खान।
0: क्या बात। सलमान खान दीवाना बनके अपनी ओ ओ जाने जाना को किस फिल्म में ढूंढते हैं?
3: प्यार किया तो डरे।
0: ओह लड़की एकदम फिल्मी कीड़ा जाग रहा है। प्यार किया तो डरना क्या में अरबाज खान की बहन कौन है?
3: काजोल।
0: काजोल को अपने बेस्टी से किस फिल्म में प्यार होता है?
3: कुछ कुछ होता है।
0: कुछ कुछ होता है में अंजलि के पापा कौन है, मतलब छोटी वाली अंजलि?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान 6 दिन में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
3: बादशाह।
0: आ आ आ आ, आ, आ यहाँ आप गलत हो गई। आपने जो इस गेम में गर्दा उड़ाया है, जो ताबड़तोड़ आपने फिल्मचीपना दिखाया है, मजा ही आ गया बहुत।
3: मेरे को भी आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है।
0: जूलिया
3: I love you.
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई हमारी इस बिहारी वाला ने तो गजब का समा बांध दिया, जिसके लिए इनको ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: और अगर फिलहाल आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी जाग रहा है तो जगाइए जगाइए और मिर्ची श्रुति से इंस्टा पे जरूर मिलिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot. Mirchi.

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.